जोजोलपाथ नेपाल सम्बन्ध छिन्छा सब पिए खुद बसला गात रहेदशी थो रेडियो नेपाल ख अन्य नादी सहन जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार प्रतिनिधि सभा या मेघया निकको बैठक वैगो आर्थिक दह नेपाल सरकार नीति व ज्याजो या त सर्वसम्मति पारित याकु दु नीति व ज्याजो दथुया सल सन्ढोङ्गु न्यासया विशेषमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पाके अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले लिस बी धुङका निर्णयार्थ जुगले सर्वसम्मति थो ज्यासो पारित यागु ख अर्थमन्त्री वागले लिस बी धुङका वैकनापा अझ उप धुवा थुई के त सभामुख डोल प्रसाद अर्याल यी ब्युसान सुन सदस्य नौवना मदी विपक्षी दल सांसद पिस सलया दिस बिता प्रधानमन्त्री शाह हे बोतिका मागु माग यासे विरोध यागुले सुन सदस्य स्पष्टीकरण यागु यी छेला मोडिगु ख गुलेखे विपक्षी सदस्य पि धासा बैठक तो त पिहा झागु ख थोएझले सभामुख अर्याल संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ न्यबोबले बहुमत संशोधन अस्वीकृत जुगु घोषणा या धुङ्कानी उगु नीति व ज्याजो दति स्वीयागु विपक्षी स्वीयामा विपक्षी संशोधन संशोधन प्रस्ताव न्यभया दिगु ख थोए वैशाख 28 गते संघीय संसदीय निगु सदनीय मङ्का बैठक क खायागु छोले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आर्थिक दह 2083-84 नेपाल सरकार या दक्षीय नीति व ज्याजो क घना दिगु ख राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेपाल सरकार संशोधित कार्य सम्पादन नियमावली कथा मौजुदा मन्त्री परिषदले दुपी नियुक्ति हेरफेर व कार्य विभाजन याना मन्त्री परिषद पुनः निसुना दिगुदु राष्ट्रपति पौडेल नेपाल संविधान कथन 2082 चैत्र 13 गते निसुङ्गु प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सिफारिसे मौजुदा मन्त्री परिषद नियुक्ति हिलाबुला व ज्या भाला याना मिगाहनन निसुना दिगु ख नोगु ज्या धलक कथा प्रधानमन्त्री शाह रक्षा गृह व विज्ञान प्रविधि तथा नवपरिवर्तन मन्त्रालय थप्न हे तया दिगु दुसा अर्थमन्त्री शाह डाक्टर स्वर्णिम वागले परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शाह विराज भक्त श्रेष्ठ पूर्वाधार विकास मन्त्री शाह सुनिल लम्साल कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शाह सविता गौतम महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीतावादी जुया दिगु राष्ट्रपति या कार्यालय या प्रवक्ता रितेश कुमार साक्यपेतनादिगु विज्ञप्ति नेतना तगुदु अथियाना भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीले सस्मित पोखरेल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेल सूचना तथा संचार मन्त्री सन् डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा कृषि वन तथा पर्यावरण गीता चौधरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी व युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादव यता लेयागु विज्ञप्ति सान्यथना तगु ख नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा सरकार संविधान विधि व पद्धति कथन जुइमा जुइ त बिगुदु नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय नीति व प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मिग पोखरा गोसागोको प्रदेश स्तरीय मुजा सभापति थापा पार्टी थास प्रदेश स्थानीय तहस जिम्मेवारी कापी दुजपतिक पदाधिकारी पिसन थगो जिम्मेवारी या त आत्मसात या त इनाफ याना दिल उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा संघीय लोकतान्त्रिक पद्धति कङ्ग्रेस सरकार या त अंश उपग्वाली बिको कनादिसे लोकतान्त्रिक मु मान्यता या त आत्मसात या त सरकार या त इनाफेना दिगु ख सरकार पूर्व गृह मन्त्री सुदन गुरुङ मन्त्री जुबले व वयाल्यु लोङ्गु सार्वजनिक स्वपुतैको विशेष अध्ययन व छानबिन यायता समिति निसुङ्गुदु मन्त्री परिषदीय थोए वैशाख 28 गते या बैठक उच्च अदालत या पूर्व न्यायाधीश अच्युत प्रसाद भण्डारी नाय स्वीस महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल व सह न्यायाधीश भक्त अच्युत मणि न्यौपाने सदस्य चुनिगु याना समिति निसुनागु निसुनेगु कोचिगु ख उगु समिति याता प्रतिनिधि सभा सदस्य नापा जुया चुनादीमा गुरुङ या विशेषण सार्वजनिक कथा लोङ्गु विशेषण सत्य तथ्य अध्ययन व दुवाला सरकार नापा राय सुझाव नापा झिङ्ग्यानु दुने प्रतिवेदन लल ह्याता भाला बियागु प्रधानमन्त्री या सचिवालय जानकारी बिगुदु संघीय संसद कथा
मिग सुते झिन्छता इले कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति या बैठक ठुक्यादान सकिने नदिस संघीय संसद कथा थौ सुथे झिन्छता इले कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठक चुना चङ्गुदु बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय परिचय नापा आतक सम्पादित ज्या कारवाही ओन्हना चङ्ग आर्थिक दाया प्रगति समीक्षा वैगु कार्ययोजना या विशेष आपला सलयागु ज्यादलदुगु संसद सचिवालय थाकु ख त्रिभुवन विश्वविद्यालय खालिजुयाचङ उपकुलपति भाला इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डिन प्राध्यापक डाक्टर सुशील बहादुर बज्राचार्य त ल लागुदु प्रधानमन्त्री नापा विश्वविद्यालय कुलपति बालेन्द्र शाह मिग याना दिगुको छिना कथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय खालिजुयाचङ उपकुलपति पदे निथ ज्या सञ्चालन याबले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डिन या नापा ज्या यागु याना वैक याता उपकुलपति या भाला तोके यागुदु सार्वजनिक निकाय सम्पदा अधिकारी या पदमुक्त विशेष अध्यादेश जारी जुइन विश्वविद्यालय उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर दीपक अर्याल राजीनामा बी धुङकानी सेलनाको विकास सामाजिक समावेशिता व छेज या सशक्त भाला केन्द्रित जुया थौ हलिया थिथि देशे थिथि ज्यासो गोसा गोया अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवस हनासङ्गुदु थोइ लसत्या संयुक्त राष्ट्र संज्ञा प्रधान कार्यालय वैगु निकगु विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन या तयारी कथा सेनलागु विकास नीति नीतिगत समाधान या विशेष सल व्याकाचङ्गुदु सन् 1980 दशक निशे छेज नापा स्वपु तैगु विशेष राष्ट्रसँग विशेष ध्यान बित सङ्गु जुसान आर्थिक व सामाजिक परिषद या सिफारिसे सामाजिक विकास आयोग सन् 1983 सम् विकास प्रक्रियासँग छेजया भाला नापा या प्रस्ताव पारित यासे छेजया हाठ्या आवश्यकता व समाधान उपाय त विशेष विश्वव्यापी जनचेतना उपोकीयता महासचिव याता इनाफ्यागु ख राष्ट्र संज्ञा कथा सन् 1985 सम् परिषद महासभा याता विकास प्रक्रियासँग छेज शीर्षक याता थगु ज्या धलके दुथ्या के त सुचम बिगु ख वयान ल्यु सदस्य राष्ट्रिय धारणा प्रस्ताव या लिदसा छेज या अवस्था व कल्याण सुधार यागु व सामाजिक विकास नीति अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी उपोक्य गुकु त न्यजाकगु ख ल्युने वै फैगु खुसी बा व सडक देखे गुज्याया हुने काभ्रे पलाञ्चक सिन्धुली खेदुगु बिपी राजमार्ग हुम्लाया हिल्सा सिमकोट सडक खण्डे सवारी जुइगु टिना बिगुदु प्रहरी प्रधान कार्यालय हिगो सुचम्पी थासे काभ्रे पलाञ्चक या खुरकोट नेपाल थो कटुन्जे बेसी जुसे सिन्धुली न्यायगु बिपी राजमार्ग खे आपाल हाठ्या डुगुली सवारी वेगु वनेगुली टिना बियागु जानकारी बिगु ख थुगुसिया बसन्त ऋतु या नीति सगरमाथा गेगु ल चाका बिगुदु सगरमाथा आधार शिविर निसे चोका तक खिप ते व आरोहरण या ल चाका बियागु पर्यटन विभाग धागुदु सगरमाथा लोत्से व नुप्से हिमालय ता गेगु ल व्यवस्थापन या नीति सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति व पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घ नेपाल खिप ते गु ज्या पोङके धुङकानी सर्वोच्च शिखर सगरमाथा या आधार शिविर निसे चोका तक या गेगु ल चाका बियागु विभाग धागु ख खिप ते गु आधार शिविर निसे क्याम्प दुई तक च्यामा आश्वल डक्टर व क्याम्प दुई निसे चोका तक झिन्छमा पथ प्रदर्शक दुथ्यागु विभाग जानकारी बिगु सुचा बिगु ख नेपाल विश्व बैंक या शैक्षिक विकास फक्क ग्वाली याइगु जुगुदु शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल नापा मिग शिक्षा मन्त्रालय जुगु नाप्लाय ज्या विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक डेभिड सिसलेन थोक ह या जानकारी ब्यादिगु ख थोए लसता वैकपी दथुई शिक्षा लागा भिङ्केगु पूर्वाधार तब्याकेगु प्रविधि मैत्री शिक्षा प्रणाली विशेष खलाबला जुगु दुसा विश्व बैङ्क विशेष याना बनेको थियो व शैक्षिक पूर्वाधार विकास अझ उपलगानी व सहकार्य या त एकागु धागुदु दीर्घकालीन सुधार व गुणस्तरीय शिक्षा पहुँच तब्याकेगु नीति साझेदारी या त अझ लिचो लाकेगु यागु विशेषण सल जुगु मन्त्रालय या थापुदु आदेश पिन्या बुख
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङ दिमिग बेजिङ नाप्लाई ज्याजुगुदु ग्रेट हल अफ द पिपल गोसागुगु झझधागु ज्याजोले चिनिया समकक्षी सी नापान जुगु खला बलाय यो प्याछी जुगु अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प जानकारी ब्यादिगु ख नाप्लायागु छोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङ या त सेप्टेम्बर 24 व्हाइट हाउस भ्रमण नीति बनादिगु नन्दु थ्वे दति चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव व राष्ट्रपति सी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प न पाया स ललिपा गोसा गोगु चाने स्या भया त क घासे चीन या प्रगति अमेरिका या त अज चे थाउनीगु लपु चालीगु जानकारी ब्यादिगु ख इरानी नौसैनिक बल चिनिया जहाज तेगु छगु पुच या त मंगलबार या चाने निसे रणनीतिक जलमार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुज जुसे वने त अनुमति ल लागुदु इरानी समाचार समिति तस्नीम इरानी अधिकारी या त नेथासे इस्लामिक गणतन्त्र इरानिया कोछिना लिपा छु चिनिया जाँस्ते त स्ट्रेट अफ हर्मुज जुसे इरानिया व्यवस्थापन पार वहन कानुन कथ वे वने त अनुमति बियागु चोया त अगुदु बेजिङ या इनाप्लिपा थो ल चाकागु थागुदु आ मौसम या जानकारी थौ कोसी बागमती व गण्डकी प्रदेश छुन थासे ल्याउदुगु हिमाली पहाडी लागाया मो थासे व ल्याउदुगु तराई लागाया छगुनिगु थासे वा वैगु सम्भावना दु त जागु लागाया छुन तसे चपु कुहा वैगु सम्भावना कुबिगुन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या थापुदु वङ्गु निपे घौले ये सोनी गया क्वाच निखुगु फुटी नेगु डिग्री सेल्सियस तथा चोनिगु दुकुमा दु थौ निने ये सोनी गया क्वाच निखुगु निसे निच्यागु डिग्री सेल्सियस सोनीको दुकुमा दु थौ सुथे यहाँ सोनीगले न्याता यी जुया गुता न्याता यी जुया गुगु मिनेटे लुई क गु सूर्य शनिल खुता यी जुया ङ्यागु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा या समाचार पुन चिताईले नेपाली भाषा या समाचार निनादिस शुभ

दि रेडियो नेपालीन आङ श्रृङ लामा शेर्पाने शेरिकेकी साङ्गिर सेन्डोनाङ सिङजिन रामचन्द्र पौडेललाई महालेखा परीक्षकी पल्जोर लोङितोङ गेचुग्या चिक्दङ गेचुग्या निकी लोखोर प्रतिवेदन सिगेमोय सिङजिन ल्याखुङलाई आरिङकोटी क्याउ मिक्सल ल्यारिमलाई महालेखा परीक्षक तोयम रायकी सिङजिनलाई ती प्रतिवेदन सिगेपु सेनोय ती कपला सिङजिन पौडेलकी तन्दा फरिन गलुक बेरुजु कोरला सेन्दुक क्यानाङिन सार्वजनिक सकपातुई ट्याङ्बु क्याने लाका कि ओला सुगेप नाङसुङ सिङजिन पौडेलकी काङ थेप्चे डोसुङ तोङ्गुप लाका मेताजोइ लुक्सो ल्यामु जोथोप सिङ ग्यालखपला पुताकपु सिदे सुशासन ताङ ग्यालखप यर्गेकी मिक्युल डुपाकी थोपु इसेक्या नाङसुङ काठमाडौँ जमुलिङ लोप्टा केयुकी उपकुलपतिकी ल्यागेन प्रोफेसर ऋषिकेश बग्लेला बिनुवाए सिलोन तेजिन जमुलिङ लोप्टाकी कुलपति बालेन्द्र साहकी गलुप बैसाखलाकी गते सुम्चु सेर्मु क्याउ थाक्चोत नङसिन जमुलिङ लोप्टाकी तोङबा हुतुप उपकुलपतिकी ल्यागेन खोङला बिन्दुप सेनुवाए वाकले केयुकी ठिम सङ्काएकी घोमी डिनसङ इन्दुप सेनुवाए दुग्राङ क्याने पोखरा जमुलिङ लोप्टाकी उपकुलपतिकी ल्यागेन पोखरा जमुलिङ लोप्टा स्कुल अफ हेल्थ एन्ड एलाइड साइन्सेसकी प्राध्यापक डाक्टर विष्णुराज तिवारीलाई बिन्दुप सेनुवाए सिलोन तेजिन जमुलिङ लोप्टाकी कुलपति बालेन्द्र साहकी गलुक बैसाख लाकी गते सुम्चु छेर्मु क्याउ थाक्चुत नङसिन प्राध्यापक डाक्टर तिवारीलाई ती ल्यागेन बिन्दुप सेनुवाए नोरलोनपो डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेकी ताउङ्गु पल्जोर लोङितोङ गेजुग्या सुमताङ गेजुग्या झिकी बजेट ग्यालखपकी तन्दीप पल्जोर कालेमेता जोइ ग्यालखप यर्गे जोप्ला क्याने टडिक्याउ सुङवाए सङ्घीय टोसोकी सदनी कर्त्यमा एमबी सुङकी सिजु तेजिन ल्यारिम थाक्चुत चुङसीमा ताउङ्गु पल्जोर लोकी बजेटकी सिजु ताङ खाक्ष्या ज्याक्नागिन ग्यालखपकी मिमाङ तेरिकी लाका नेतुप क्याने पल्जोर यर्गे डिजिटल गिरुवा ताङ सुशासनला खाक्षनपो लाका कितु सुङसुङ नोरलोनपो डाक्टर वाग्लेकी खोङकी ज्याक्नाङ्गु सिद्धान्त कोर्ला टोङ्गु कितुप र्यावा क्यानाङ्गिन टोङ्गु त्यामा वाउ तमियाला ताउङ्गु पल्जोर लोकी बजेट जोप खेलेन क्या नाङसुङ श्रम रोजगार तेदिन चिसोक सुङ्ग्योप लोन खाङ्की सिगेल्ला लाका कितुपला तोङ्गिसिङ ग्यालखाप दिनताङ क्यान श्रम थुनलाम कितुप लाका गोचुनवाए लोनखाङ स्तरकी यार्गे कले मेता जब सोकपी सोकदुला सुङ्लप्नागिन लोनखाङकी टुङ्गिक डाक्टर दीपक काफ्लेकी याङलोङ श्रम स्वीकृति प्रक्रियाला सिङ्क्योङ कितुपला अटोमेसन जब टडिकी होतुप ख्यान्थोक नाङसुङ खोङकी सेतुप नाङसिन याङलोङ श्रम स्वीकृति कोरकी टडिग्यार्के जब प्रस्ताव कोरला वान सिन्धुप ताङ ङमुरङ थाक्सुत कितुप सेनुवाए लोनखाङकी छोङखाङ फम सही चिक्ला श्रम अडिट कितुप लाका गोचुनवाए सिगेल्ला लाका कितुपला मितो तोङ्गुप टडिक ल्यामु जोप्ला ग्यालखप दिनताङ क्यान श्रम थुनलाम कितुप लाकी तोन्दोक्ला लाका गोचुन सिन्धु सेनुवाए सुङकी गोमी नाङसित लोनपो सुदन गुरुङकी कोर्ला न्यामसिप कितुपला छकपा जोनवाए लोनसकी भैँसक लाकी गते निसुगेकी सेर्मु देउल सक्दुकी थोरिम ठिमखाङकी गोमी ठिम्पोन अच्युत प्रसाद भण्डारी चिख्या महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल ताङ छ्याग्रोक न्यायाधिवक्त अच्युतमणि नेउपाने छोक्मी देतुप्याने छकपा जोप थाक्चुत क्याउ सेनवाए सिलोन बालेन्द्र साहकी प्रेस तेजिन न्यामसिप ख्यापा दिपा दाहाल किसेतुप नाङसिन ती छकपाला प्रतिनिधि सभा छोक्मी सङ हिन्दुप गुरुङकी कोर्ला तामिया ट्याङ्बु सचेतुप्ला लोब्जुङ ताङ न्यामसिप क्याने निमा च्याङानाङलाई प्रतिवेदन सिगेको ल्यागेन बिन्दु सेनुवाए कृषि नाथुङ तेजिन खोर्युक लोनखाङकी छा न्योप तेजिन डिलरतुई रासायनिक छा नियन्त्रण आदेशला रासायनिक छा त्यो मापदण्ड नङसिन चङ्गुप लाका कि गोला निर्देशन बिनुवाए लोनखाङकी आदेशकी खप्तेला गल्ने ट्याङ्बु मिदुप थो ताङ लेबल जाङ्ने रासायनिक छा चङ्गुप लाका कितुप म्याङ्गुला सु ओतुप सेनुवाए सुङकी अनुदानलाई खुर्ने औ छा कि कालो बजारी कितुप सङ्ग्यान्तोल तिवाला ठिम नङसिन ठिम तङ्गुप लोनखाङकी पल्जोर ख्यापा महानन्द जोशीकी ख्यान्तोक नाङसुङ लोनखाङकी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड ताङ साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड कि ल्याखुङ तेजिन डिपो ताङ छाङ्योप ताङ चङ्गुप डिलर कि शिला दर्ता चङ्गुप सोङखाङ त्यामातिरङ छाङ्योपला ससिङ लाका कितुप तिवाला सुवाए बजारला न्यौ रासायनिक छा कि गोङ स्रोत तेजिन गुणस्तर कि शिला छा चङ्गुप तिवाताङ क्यान ताङ्य ट्याङ्बु सचेने न्यो गौला लोनखाङ कि सुवाए टोङबा न्यामसिप छोक्पी सुङकी कोसा नाछोक्ला ओतुप तोङ सुमचुला ठिम तोङ्गुप गनवाए छोक्पी लेन्ची खेपेलकी सार्वजनिक कोसाला ओतुप ताङ रिटायर्ड गलुप मितुई टोङबी थो इन्जिक मेन्जिक पेस कितुपला निर्देशन बिन्दुप सेनवाए छोक्पी पल्जोर लोङितोङ गेचुग्या निताङ गेचुग्या सुमस्याक्ला सार्वजनिक कोसाला ओतुप ताङ तुसो तिङला कोसाने गङबा सु मितेवाला टोङबी थो चिगेकुला सुइन छोक्पी सुङसेपा डिआइजी गणेश केसीकी डेलो ओतुप त्यो तेरी ताङ तेजिन सबसित ताङ सार्वजनिक कोसाला होतुप सबसित कुसप तङ एमबी सुङकी कोसाला होतुप कुसप तुई छोक्ला दुकै लेन खेपेल क्याउ सेनुवाए
Shigella laka kitubla Greece tang UAE tongi sini tanga bumni shutuk kya kolo po kya ukyon la kursung makme ki mirangi la zimbu shenwa zimbu mitiwa kabri plan suk bumlu tonker wada ang chikilo ngapchunga anga ki madu sudan parazuli tang parbat kusma tonker wada angi ki lo sumchi so angi ki prakas pastola indu kathmandu upateka aparat anusandan lyakung teku ki sungshepa tezin SP rameswar karki ki khentok nangubin khongtiwa ngi karla nyamship ki tondokla aring baidesik rozgar bibhag tahasal tangu sungshepa karki ki khentok nangsung नेपाली काङ्ग्रेस सुखी अनुशासन सोक्पा याङलुङ जोनवाय सोक्स गगन कुमार थापाकी सुखी केन्द्रीय सोक्मी तारामान गुरुङकी गोठितला वतु सोक्पा याङलुङ जोन जौ सेनवाय काङ्ग्रेसकी कार्यवाहक टुङ्गी सु कृष्ण प्रसाद दुलालकी सेतुम नाङसिन सोक्पी सोक्मीला केन्द्रीय सोक्मी तेवा दाना खतिवडा तङ रमेश प्रसाद दमाला तङ बजरङ नेपाली थु सेनवाय ग्यालियोङ दलित सोक्पी सोक्मी टुन्जे कामिकी कोसाने गङबासु सेनवाय एमबी सठिमकी दारांगी तो ङप्चुङा अङकी उपादारा झिकी क नङसिन आरिङने जुन लाक्लेन कितुप क्याने खोङकी सिङजिन रामचन्द्र पोडेल कोसाने गङबासु यिगी सिगेबु सिङजिन ल्याकुङकी सेतुपिन फ्लो तङ जाङ थितुप कालीगण्डकी करिडोर लाम आयोजना नङ्गी साम्बा अङ जोप तन्दोक्ला ट्याङ्गा करोड गुप्चु गुवा टुक तङ बुम गेचुकी थुल्लाम चुङ्गुप सेनवाय कोराला लामला साम्बा जोप तन्दोक्ला लोनपो स्तरकी थाकचोत चुङ्गुप बेनी जोमसोम कोराला लाम आयोजनाकी आयोजना सु तेजसी शर्माकी खेन्तोक नाङ्गुबिन साम्बा अङ जोप तन्दोक्ला लाचीकी नाङला ठेकाकी थुल्लम लाका गोजुतुप सु शर्माकी खेन्तोक नाङसुङ मोटरसाइकल की गेम ने आरिंग मी गेंदा मिराचिक नासा गनवाए बेसी सर ट्वंकेर वडा आंगचिक उदीपुर ने रामचोक छोकला डोई ओतुप मोटरसाइकल की ती दासा की लो दिन चु थोन जी की महादिनी सेराई नासा गलु शेन वाए तुग्रां क्याने दपचोकला शोर ने मोटरसाइकल तोंगुप मी लोंगी शू की विकेश तामांग नासा गलु जोंकी कोर्सुंगमक मी ल्याकुं की लेन खेपेल की तुपमी ज्ञानेन्द्र बहादुर छेत्री की सेतुबिन सीतावन जोंकी इच्छा कामना युल सोक्पा वडा आंगचिक कुल बाङ्ला नाथुङ्गी स्यमुङ सोने लोटुकी आङा नमुना चेपाङ नासा गौलासिसी खोङकी अचु ताङ ऐ नन्दे ओतुप सेनवाय खोङतिवा तन्द भरतपुर मेनखाङला मेन्जुकी ओतुप सेनवाय रेडियो नेपालले आरिङकी सेरी केकी साङ्गिर डुसुङ तुसिसे

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषामा समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष महालेखा परीक्षक के आर्थिक वर्ष 2081-82 के वार्षिक प्रतिवेदन पेश कयल गेल अछि। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आइ भेल कार्यक्रम में राष्ट्रपति पौडेल समक्ष महालेखा परीक्षक तोयम राय ई प्रतिवेदन पेश कयलनि। एहि अवसर पर राष्ट्रपति पौडेल लंबा समय से बढ़त गेल सरकारी खर्च के बेरोजी देखला पर सार्वजनिक निकाय के जवाबदेहिता पारदर्शिता आर्थिक अनुशासन किछ नीचा खसकल महसूस भेल बतौलनि। राष्ट्रपति पौडेल अनियमित रूप में होइताल सरकारी खर्च के निरुत्साहित क आर्थिक अनुशासन कायम भेला पर देश टिकाऊ शांति सुशासन विकास आ समृद्धि के युवा पुस्ता के आकांक्षा पूरा हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। एहि प्रतिवेदन में उठान भेल विषय वस्तु संबंधित निकाय आ सरोकार वाला के आर अधिक जवाबदेहिता बोध करेबाक हुनकर कहब छलनि। सरकारी खर्च रकम के बढ़ रहल बेरुजू कम करैत आर्थिक अनुशासन जवाबदेहिता पारदर्शिता कायम रखबाक कार्य में महालेखा परीक्षक के कार्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण भेला सँ आब वाला दिन में संस्थागत सक्षमता पेशागत क्षमता अभिवृद्धि आंतरिक सुशासन कायम करबा दिस सेहो कार्यालय अय क्रियाशील हेबाक चाही से हम बुझै छी, राष्ट्रपति पौडेल कहलनि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संग नेपालक लेल संयुक्त राष्ट्र संघ के आवासीय संयोजक लीला पीटर्स याहिया शिष्टाचार भेंटवार्ता कयलनि। राष्ट्रपति भवन में आई भेल भेंट के अवसर पर ओ सब नेपाल तथा राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ बीच आपसी सहयोग वृद्धि करय लगायत विषय में विचार विमर्श भेल राष्ट्रपति के कार्यालय जनौलक अछि। सभामुख डोल प्रसाद आर्याल संग नेपालक लेल जापानक राजदूत मायदा तुरू शिष्टाचार भेंट वार्ता कयलनि। सिंहदरबार स्थित सभामुख कार्यकक्ष में हुनका सबके बीच भेल भेंट में नेपाल आ जापान बीच के दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण संबंध आपसी सहकार्य तथा द्विपक्षीय हित के विविध विषय में सकारात्मक विचार विमर्श भेल छल। भेंट में सभामुख आर्याल अपन कार्यकाल में नेपाल जापान संबंध आर सुदृढ़ प्रगाढ़ आ परिणाममुखी हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ नेपाल के विकास पूर्वाधार शिक्षा तथा प्रविधि क्षेत्र में जापान पहुँचवित आयल सहयोग के प्रशंसा करैत आबय वाला दिन में सेहो सहकार्य आर विस्तार हेबाक अपेक्षा रखने सभामुख के स्वकीय सचिवालय जनौलक अछि। एहि अवसर पर राजदूत तोरू नेपाल संघ के संबंध के जापान उच्च महत्व देने चर्च करैत आपसी सहकार्य के थप मजबूत बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। सरकार सार्वजनिक खरीद में मितव्ययिता अपनावा तथा अत्यावश्यक बाहेक अन्य अवस्था में कोनो किस्म के नया सामग्री खरीद नहि कर निर्देशन देलक अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय बृहस्पति दिन सरकार के सब मंत्रालय आयोग सचिवालय कार्यालय सरकारी निकाय मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के संगे सब प्रदेश में परिपत्र पठबैत ई निर्देशन देलक अछि। मंत्रिपरिषद के कार्यालय अत्यावश्यक बाहेक नया सामग्री खरीद नहि कर मौजूदा औजार उपकरण फर्नीचर आ सवारी साधन के चालू अवस्था में राखि सार्वजनिक खर्च जोगाबा अनुरोध कयलक अछि। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्रालय खाद के आयातकर्ता तथा डीलर सब के रासायनिक खाद नियंत्रण आदेश उल्लेखित रासायनिक खाद के स्पेसिफिकेशन हिसाबे खाद के कारोबार करवाक लेल निर्देशन देलक अछि। मंत्रालय आदेश के प्रावधान विपरीत गलत विवरण तथा लेबल राखि रासायनिक खाद के पैठारी तथा मिश्रण बिक्री वितरण नहि करबाक लेल आग्रह कयलक अछि। सरकार अनुदान में उपलब्ध करौने खाद के कालाबाजारी करय वाला व्यापारी के प्रचलित कानून बमोजिम कार्रवाई करबाक मंत्रालय के कृषि अर्थविज्ञ महानंद जोशी जानकारी देलनि। हुनक हिसाबे रासायनिक खाद तत्वीय संरचना न्यूनतम अधिकतम पोषक तत्व के मात्रा भौतिक तथा रासायनिक गुणस्तर भेल खाद मात्र पैठारी एवं बिक्री वितरण कर के व्यवस्था अछि। मंत्रालय कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड आ साल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के बिक्री कार्यालय तथा डिपो आ खाद आयातकर्ता व डीलर के रूप में दर्ता भेल भरोसगर स्रोत से मात्र खाद खरीद करबाक लेल किसान के अनुरोध कयलक अछि। बाजार में भेटा वाला रासायनिक खाद के मोल स्रोत एवं गुणस्तर के संबंध में खाद विक्रेता संग आवश्यक पूछताछ तथा गुणस्तर यकीन कक खरीद करबाक लेल मंत्रालय आह्वान कयलक अछि। चालू आर्थिक वर्ष के बैसाख मसांत धरि में सरकार के बजट खर्च वार्षिक विनियोजन के करीब 60% भेल अछि। महालेखा नियंत्रण कार्यालय के हिसाबे बीतल 10 महीना में 11 खरब 73 अरब 52 करोड़ 1 लाख बजट
खर्च भेल अछि। चालू आर्थिक वर्ष के लेल सरकार जमा 19,64,11,00,00,000 बराबरीक बजट लौने में अखन धरि वार्षिक विनियोजन के 59.75% खर्च भेल अछि। एहि कार्यालय के हिसाबे चालू आर्थिक वर्षक लेल चालू दिस 11,80,98,00,00,000 विनियोजन भेला पर वैशाख मसांत धरि में 68.98% आ 8,14,65,55,00,00,000 खर्च भेल अछि। एहिना पूंजीगत दिस 4,07,88,80,00,00,000 टका विनियोजन भेल में 27.91% अर्थात 1,13,84,92,00,00,000 बराबरी खर्च भेल अछि। वित्तीय व्यवस्था तर दिस अखन धरि बजट खर्च 65.30% रहल अछि। एहि शीर्षक में चालू आर्थिक वर्ष के लेल सरकार 3,75,24,20,00,000 विनियोजन कयने में अखन धरि 2,45,01,54,00,000 बराबरी खर्च भेल अछि। वैशाख मसांत धरि में सरकार के आमदनी वार्षिक लक्ष्य के 66% में रहल अछि। चालू आर्थिक वर्ष के लेल जमा 15,33,44,69,00,000 बराबरीक आमदनी करबाक लक्ष्य रहल में सरकार अखन धरि 10,12,05,24,00,000 बराबरीक आमदनी कयलक अछि। एहि आर्थिक वर्ष में 14,80,00,00,000 राजस्व उठेबाक लक्ष्य रखने सरकार जीतल 10 महीना में वार्षिक लक्ष्य के 66.69% अर्थात 9,88,55,22,00,000 बराबरीक मात्रा वसूली कयलक अछि। चालू आर्थिक वर्ष के लेल 53,44,69,00,000 वैदेशिक अनुदान लेबाक लक्ष्य रखने सरकार अखन धरि एहि लक्ष्य के 33.28% अर्थात 17,78,76,00,000 बराबरीक अनुदान लेने भेटल अछि। वीरगंज आ हेठौड़ा के मेन रोड के सड़क अतिक्रमण हटौने संगे आय सॅ पूर्व पश्चिम राजमार्ग के 12 जिला के अमलीगंज सड़क खंड में अतिक्रमण में रहल सड़क वन आ निकुंज के जमीन खाली करबाक कार्य शुरू भेल अछि। भिनसर 7 बजे से शुरू भेल अभियान अंतर्गत राजमार्ग के 3 नंबर पुल क्षेत्र में रहल 35 घर आ लंबा समय से बंद रहल सामुदायिक विद्यालय के संरचना ढहल गेल अछि। डिवीजन वन कार्यालय 12 के नेतृत्व में भेल एहि कार्य के लेल एहि क्षेत्र में अधिक संख्या में नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, वन रक्षक तथा परसा राष्ट्रीय निकुंज के कर्मचारी सब परिचालन कयल गेल अछि। अतिक्रमण खाली करबाक क्रम में स्थानीय प्रशासन बीच सामान्य विवाद के अवस्था सृजना भेल छल। यद्यपि अखन अवस्था सामान्य रहल डिवीजन वन कार्यालय के सहायक वन अधिकृत वीरेंद्र यादव जानकारी देलनि। राजमार्ग के 3 नंबर पुल के कात में अतिक्रमण ककर रही रहल अधिकांश मकवानपुर के थाई बासिंदा रहल छलथि जे एहि क्षेत्र में होटल व्यवसाय संचालन करैत आयल छलथि। डिवीजन सड़क कार्यालय सड़क क्षेत्र के दहिना बम्मा साइड 25-25 मीटर खाली करौलाक बाद वन कार्यालय परसा राष्ट्रीय निकुंज अपन स्वामित्व में रखने क्षेत्र खाली करावाक प्रक्रिया आगू बढ़ौलक अछि। सुरक्षाकर्मी आ कर्मचारी के अधिक उपस्थिति में सड़क किनार में अवैध संरचना सब हटेबाक काज भ रहल अछि। आब मौसम समाचार। अखन देश में पश्चिमी आ स्थानीय वायु तथा देश के नजदीक निचका वायुमंडल में रहल न्यून चापीय क्षेत्र के प्रभाव रहल अछि। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के हिसाबे अखन कोसी, बागमती आ गंडकी प्रदेश के हिमालय तथा पहाड़ी भाग में साधारणता बदली रहत, बाकी भाग में आंशिक बदली भेल अछि। बागमती आ गंडकी प्रदेश के किछु तथा कोसी प्रदेश के 1-2 स्थान में मेघगर्जन सहित हल्का से मध्यम वर्षा भ रहल अछि। अहिना आई राति कोसी, मधेश, बागमती आ गंडकी प्रदेश सहित देश के हिमालय तथा पहाड़ी भूभाग में साधारणता बदली रहबाक तथा बाकी पहाड़ी आ तराई भूभाग में आंशिक बदली रहबाक पूर्वानुमान कयल गेल अछि। कोसी आ मधेश प्रदेश सहित बागमती आ गंडकी प्रदेश के हिमालय तथा पहाड़ी भूभाग के किछु तथा कर्णालीय सुदूर पश्चिम प्रदेश के हिमालय भूभाग के 1-2 स्थान में मेघगर्जन तथा ठनका सहित मध्यम वर्षा तथा हिमपात के संभावना रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध अंत करबाक ईरान के 14 बूंदे शांति प्रस्ताव के स्वीकार करें ईरानी दैनिक अखबार तेहरान टाइम्स आई रिपोर्ट कयलक अछि। ईरान 2 चरण के वार्ता प्रक्रिया के प्रस्ताव सहित ई प्रस्ताव पेश केने तेहरान टाइम्स जनौलक अछि। प्रस्ताव हिसाबे पहिल चरण के लक्ष्य युद्ध के अंत करब अछि, तऽ ईरान के शर्त पूरा भेलाक बाद आणविक मुद्दा संबंधी दोसर चरण के वार्ता
शुरू होयत। अ महीना के शुरू में ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका में 14 बुंदे प्रस्ताव पेश करत शत्रुता अंत आ अपन क्षेत्र से अमेरिकी सेना के पूर्ण निकासी के आह्वान कने छल। ई प्रस्ताव अमेरिकी प्रस्ताव के जवाब में पाकिस्तानी मध्यस्थ मार्फत प्रदान कयल गेल छल। ऐसे पहिने वाशिंगटन के योजना से दू महीना के युद्ध विराम के आह्वान कला पर तेहरान युद्ध विराम के सट्टा युद्ध के अंत में केंद्रित हुए 30 दिन के समय सीमा अनुरोध कने छल। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुन रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टल के समक्ष महालेखा परीक्षक का वार्षिक प्रतिवेदन हुआ पेश। सार्वजनिक निकायों में आर्थिक अनुशासन बनाए रखने पर राष्ट्रपति ने दिया जोर। संविधान संशोधन के लिए बहस पत्र तैयार करने को गठित कार्यदल ने जनजी प्रतिनिधियों को सकारात्मक संवाद के लिए किया आह्वान। लुम्बिनी प्रदेश में मंत्रालयों की संख्या घटाकर केवल 8 रखने का प्रदेश मंत्रिपरिषद का निर्णय। और हुरमुज जलमार्ग खोलने को लेकर चीन ने किया प्रस्ताव, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कथन। द्वंद्व समाधान के लिए चीन का सहयोग स्वीकार करने का ईरान का कथन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टल के समक्ष महालेखा परीक्षक के आर्थिक वर्ष 2081-82 की वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ। आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में महालेखा परीक्षक तोयम राय ने राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मौके पर राष्ट्रपति पोर्टल ने बढ़ते अनियमित व्यय पर चिंता व्यक्त करते हुए सार्वजनिक निकायों से जवाबदेही, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का आग्रह किया। संविधान संशोधन के लिए बहस पत्र तैयार करने को गठित कार्यदल ने जनजी प्रतिनिधियों को सकारात्मक संवाद में सहभागी होने का आह्वान किया है। जनजी प्रतिनिधियों के साथ होने वाली चर्चा को लेकर उत्पन्न कुछ भ्रम की स्थिति के बीच ये आह्वान किया गया है। कार्यदल के संयोजक असीम शाह ने कहा कि सभी सरोकार वाले पक्षों के सुझावों को समेटकर बहस पत्र को पूर्ण रूप देना ही कार्यदल का मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में जनजी प्रतिनिधियों को भी चर्चा के लिए आह्वान किया गया है। निर्धारित चर्चा के संबंध में कुछ जेएनजी प्रतिनिधियों द्वारा पिछली सरकार के साथ हुए समझौतों को लेकर असंतोष व्यक्त किए जाने के बाद संयोजक शाह ने स्थिति स्पष्ट की। इस बात का जिक्र करते हुए कि कार्यदल द्वारा आयोजित ये चर्चा संविधान संशोधन के लिए सुझाव संकलन करने के विशेष और अलग उद्देश्य से की जा रही है, संयोजक शाह ने इसे अन्य विषयों से न जोड़ने का आग्रह किया। बता दें कि कार्यदल ने गत चैत 25-31 से विभिन्न सरोकार वाले पक्षों के साथ चर्चा प्रारंभ की थी। सरकार ने सार्वजनिक खरीद में मितव्ययिता अपनाने और अत्यावश्यक परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की नई सामग्री खरीद न करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने सरकार के सभी मंत्रालयों, आयोगों, सचिवालयों, कार्यालयों, सरकारी निकायों, मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद कार्यालयों व सभी प्रदेशों को परिपत्र जारी कर खर्च में मितव्ययिता बरतने का निर्देश दिया है। कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने कहा कि कृषि पेशे को सम्मानजनक और आकर्षक बनाने के लिए नीतिगत सुधार और स्रोत व्यवस्थापन के प्रति मंत्रालय प्रतिबद्ध है। आज कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति की बैठक में मंत्री चौधरी ने कहा कि कृषि क्षेत्र की शिक्षा, अनुसंधान और प्रविधि को समयानुकूल संशोधित कर जनमुखी बनाने की तैयारी की जा रही है। मंत्री चौधरी ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के आयात पर ही मंत्रालय का लगभग 50% बजट खर्च हो जाता है, इसलिए रासायनिक उर्वरकों के आयात को कम कर जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। बैठक में सांसदों ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट रही है तथा जनस्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने देश के जलस्रोत और विद्युत का उपयोग कर ग्रीन हाइड्रोजन प्रविधि के माध्यम से उर्वरक उत्पादन शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि सरकार संविधान द्वारा सुनिश्चित प्रेस और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाएगी। संचारिका समूह नेपाल के साथ मंत्रालय में आयोजित भेंटघाट एवं चर्चा के दौरान संचार मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने कहा कि सरकार प्रेस स्वतंत्रता के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि संचार माध्यमों और नागरिकों दोनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय जिम्मेदारी का बोध होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि हाल के समय में संचार क्षेत्र विभिन्न चुनौतियों से गुजर रहा है और समग्र संचार प्रणाली में सुधार के लिए मंत्रालय गंभीरतापूर्वक काम कर रहा है। भेंट के दौरान मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने लंबे समय से क्रियान्वयन में समस्या झेल रहे श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के तहत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण संबंधी व्यवस्था को लागू करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संचार क्षेत्र में कार्यरत पत्रकारों को नियमित पारिश्रमिक न मिलना, श्रम अधिकारों का क्रियान्वयन न होना और असुरक्षित वातावरण में काम करने की स्थिति को समाप्त करने के लिए मंत्रालय आवश्यक पहल करेगा। संसदीय सुनवाई समिति के सभापति बोध नारायण श्रेष्ठ ने कहा है कि संसदीय सुनवाई के बाद नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को अपनी प्रस्तुत प्रतिबद्धताओं को परिणाम आधारित बनाकर प्रत्येक 4 माह में सार्वजनिक करना होगा। आज संसद सचिवालय में संसदीय मामलों को कवर करने वाले पत्रकारों के साथ आयोजित चर्चा में सभापति श्रेष्ठ ने बताया कि संसदीय सुनवाई के बाद नियुक्त होने वाले व्यक्तियों द्वारा समिति में प्रस्तुत परिणाम आधारित कार्य योजना को संबंधित निकाय में अभिलेखित कर प्रत्येक 4 माह में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सार्वजनिक करने की व्यवस्था कार्यविधि में की गई है। उन्होंने कहा कि विधि और प्रक्रिया के दायरे में रहकर सुनवाई को खुला, पारदर्शी और प्रभावकारी ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। सभापति श्रेष्ठ ने यह भी जानकारी दी कि मनोज कुमार शर्मा को संवैधानिक परिषद द्वारा प्रधान न्यायाधीश पद के लिए अनुशंसित किए जाने के बाद उनकी सुनवाई प्रक्रिया के लिए शिकायतें आह्वान की गई हैं। आगामी मंगलवार को प्राप्त शिकायतों को खोलकर उनका अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद सुनवाई प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलीकॉम को 4G।

0: नेपाल टेलिकॉम राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकार ने मंत्रालयों की संख्या घटाने का निर्णय किया है। प्रदेश मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक ने प्रशासनिक खर्च में कटौती करने के उद्देश्य से आगामी सावन 1 गते से लागू होने वाले प्रावधान के तहत प्रदेश में केवल 8 मंत्रालय बनाए रखने का निर्णय किया। बैठक ने इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद कापरी के संयोजकत्व में गठित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति को प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2079 में आवश्यक संशोधन के मसौदे सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश किया। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता तथा कृषि भूमि व्यवस्था एवं सहकारी मंत्री दिनेश पंथी ने दी। वर्तमान में लुम्बिनी प्रदेश में मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सहित कुल 12 मंत्रालय मौजूद हैं। सरकार ने विज्ञान प्रविधि और नव प्रवर्तन क्षेत्र को केंद्र में रखते हुए एक नया मंत्रालय गठित किया है। मंत्रिपरिषद द्वारा गत वैशाख 30 गते के लिए लिए गए निर्णय और राजपत्र में प्रकाशित नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2083 के अनुसार विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन मंत्रालय औपचारिक रूप से स्थापित किया गया है। सरकार के इस निर्णय को, जिसमें विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्र को अलग मंत्रालय के माध्यम से आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई है, राज्य की दीर्घकालीन विकास रणनीति से जोड़कर देखा गया है। वर्तमान में इस मंत्रालय की जिम्मेदारी स्वयं प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह संभाल रहे हैं। नवगठित इस मंत्रालय को विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन से संबंधित नीतियां, कानून और मापदंड तैयार करने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान तथा खगोल विज्ञान से संबंधित अध्ययन और अनुसंधान की जिम्मेदारी भी इसी मंत्रालय के अंतर्गत रहने की व्यवस्था की गई है। मंत्रालय पारमाणविक पदार्थ और लावारिस स्रोतों की खोज, पुनर्प्राप्ति और प्रबंधन का कार्य भी करेगा। साथ ही आणविक ऊर्जा से संबंधित नीति, कानून, मापदंड, क्रियान्वयन और नियमन की जिम्मेदारी भी इसी मंत्रालय को सौंपी जाएगी। बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटा ने आज मध्यरात से प्रदेश सभा का चालू अधिवेशन अंत किया है। उन्होंने बागमती प्रदेश मंत्रिपरिषद की सिफारिश के मुताबिक आज रात 12 बजे से अधिवेशन अंत किया है। प्यूठान की मांडवी गांव पालिका डामरी खोला में हुई वैन दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। देवीस्थान दांग सड़क खंड पर वैन से नियंत्रण खो दी और सड़क से करीब 200 मीटर नीचे गिर गई, जिससे यह हादसा हुआ। इस हादसे में वैन चालक प्यूठान नगर पालिका 4 के अनुमानित 24 वर्षीय दिलीप परियार और मल्लरानी गांव पालिका 5 धुदी के अनुमानित 26 वर्षीय अभिषेक कुंवर की मौके पर ही मौत हो गई। ये जानकारी हमारे संवाददाता ने दी। जुमला के 8 स्थानीय तहों में से अब तक 6 स्थानीय तहों ने पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चितता तथा दीर्घकालीनता की घोषणा की है। जन्म से 23 महीने तक के तथा नियमित टीकाकरण तालिका में छूटे हुए सभी बच्चों को टीका लगाए जाने के बाद इन 6 स्थानीय तहों ने पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चितता की घोषणा की है। वैदेशिक रोजगार के लिए ग्रीस और यूएई भेजने के नाम पर 26 लाख रुपए ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर गुरुवार को सार्वजनिक किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कावरे पलांचोक की भुल्लू नगर पालिका 1 निवासी 52 वर्षीय मधुसूदन पराजुली और पर्वत की कुशमा नगर पालिका 2 निवासी 32 वर्षीय प्रकाश वास्तोला शामिल हैं। मधुसूदन पराजुली पर ग्रीस भेजने के नाम पर 23 लाख रुपए और प्रकाश पास्तोला पर यूएई भेजने के नाम पर 3 लाख रुपए लेने लेकिन विदेश न भेजकर संपर्क से बाहर हो जाने का आरोप है। ये जानकारी काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय टिकू के प्रवक्ता एवं एसपी रामेश्वर कार्की ने दी। दोनों आरोपियों को उपत्यका के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार कर आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए वैदेशिक रोजगार विभाग ताहचल भेजा गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी बातचीत को बेहद सफल, दुनिया भर में चर्चा योग्य और यादगार बताया है। बीजिंग में 2 दिनों तक चली बैठकों के बाद ट्रंप अब वॉशिंगटन रवाना हो गए। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग ने इस यात्रा को ऐतिहासिक और मील का पत्थर बताया। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, तेल आपूर्ति, ईरान और ताइवान जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि शी जिनपिंग ने ईरान को सैन्य उपकरण नहीं देने की प्रतिबद्धता जताई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खुला रहे। उनके मुताबिक बीजिंग ने अमेरिका से तेल खरीदने पर भी सहमति जताई है। हालांकि अब तक बातचीत के ठोस नतीजों या किसी औपचारिक समझौते को लेकर दोनों पक्षों ने सीमित जानकारी ही साझा की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल के समक्ष महालेखा परीक्षक का वार्षिक प्रतिवेदन हुआ पेश। सार्वजनिक निकायों में आर्थिक अनुशासन बनाए रखने पर राष्ट्रपति ने दिया जोर। संविधान संशोधन के लिए बहस पत्र तैयार करने को गठित कार्यदल ने जनजी प्रतिनिधियों को सकारात्मक संवाद के लिए किया आह्वान। लुम्बिनी प्रदेश में मंत्रालयों की संख्या घटाकर केवल 8 रखने का प्रदेश मंत्रिपरिषद का निर्णय और हुरमुज जलमार्ग खोलने को लेकर चीन ने किया प्रस्ताव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कथन, द्वंद्व समाधान के लिए चीन का सहयोग स्वीकार करने का ईरान का कथन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
2: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
3: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
4: *14#डायल गर्नुहोस्।
0: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।